0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFS अपना शहर मातली और GFS

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज GFM 90.4।
1: आशना अपनी हकीकत से हो ए दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज, GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे KTN।
1: सिंध में पानी की शान बावजूद पंजाब तकरारी लिंक कैनाल से बंद न कई सिंध हुकूमत जो एहतजाज। सिंध में पानी जो बोहरान ए गैर सीनियर वसी शर्जी लीना में वफाक का पंजाब की ज्यादती एरसा के फैसलों को नोटिस वो मुतालबो किया। शर्जी लीना में उन बे सूबे के हिस्से से तरजीह नी दी सके। सिंध गुजरियल केतर ही डी बवी सैकड़ों पानी कोट के मुंह जी रही है जड़े मुआशी मरकज लाए संगीन खेतरा पैदा थी रहा है। गुडू बैराज से 42 ए कोटड़ी बैराज से पानी की खोट रिकॉर्ड की वही है। वफाक सिंध के जायज मुकम्मल ए जायज लाए अमली कदम खड़े। सिंध के खूबसूरत एशिया की सब का वही मंछर डंड भी सुकी वही। पान सईदाबाद में मंछर बचाओ ताज जो डंड के बहाली लाए मंछर बंद से एहतजाज। मुजाहरीन जो नसल की सतह घट 6 फुट पीण तोड़े जरे पानी का महरूम है। मंछर डंड में बिजली की बंदिश सबब कराची के पानी की फराहमी मुअत्तल। वाटर मांझ चुना है दाबे की गेट के ट्रांसफार्मर्स में फनी खराबी सबब शटडाउन के जबरी शटडाउन से ताबे की पंपिंग स्टेशन जा 21 यूनिट्स बंद है। शहर के मुख्तलिफ इलाकन के पानी की फराहमी मुअत्तल है। बिजली मुकम्मल बहाल थे हतमी जान फराहम ना की हुई। नई माली साल की बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ी ए सोलर महंगा थियण जो इम्कान। जरियन मुजिब IMF पारा बजट में सेल्स टैक्स छूट खत्म करने इलेक्ट्रिक गाड़ियों से सेल्स टैक्स 8% थे इंदड़ माली तजवीज। हाइब्रिड गाड़ियों से भी सेल्स टैक्स 8 का वधाए 8% ताई। सोलर टैक्स 10% का वधाए 8% करने की तजवीज। इंद PSDP की मद में 1126 अरब रूपया रखने की तजवीज। GDP वाद जो हद रखने की इंदड़ माली साल की बजट ला सालाना प्लान कोआर्डिनेशन कमेटी जो इजलास अजवाल की सदारत में इजलास दौरान तरक्याती बजी गई। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो इजलास 3 जून से वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत हेठ सदायण जो इम्कान। टैक्स उगाड़न में 868 अरब रूपये की घटताई के मुंह जी रो है। 12,095 अरब रूपये के अदब के मुकाबले में 11,027 अरब रूपया जमा थी सकया। वफाकी
0: आप सुन रहे थे TN न्यूज।
2: रहे हैं
3: आप सुन रहे हैं
2: GFM 88 नेक्स्ट सिंध की आवाज।
4: छावां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM
4: को हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
5: परे परे तंदड़ रेडियो
4: फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
4: 0331257 86
5: जकटी 25 25 786 सिंध जो।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन बिन डीहन में डाक करे खत्म ऐं असली स्किन ब्यूटी डीहन जो शो पाकिस्तान
1: वो तो आवाज भी मातली की है।